समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।

श्रुतम् एषां चरणसानिध्या जीवा मुक्ता भवन्ति साखरे वंश विख्यातं ज्ञानदान परायणं विनायकं गुरुं वंदे भवबंध विमुक्तये ज्ञान प्रताप विलसत वचनामृतं च अद्वैत भाव पटुता हित बुद्धिरस्य ज्ञानेश्वरस्तु भगवान अवतीर्णैव श्रीरंगनाथ गुरुराज नमोस्तु तुभ्यं। आचार्य निर्वाण प्रकरण प्रकरणामध्ये सहाव्या श्लोकामध्ये सांगतात, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र

श्रोताओं अभी सुनते हैं पारंपरिक भक्ति रचना। संगीत है श्रीनिवास खड़े जी का और स्वर है पंडित भीमसेन जोशी जी का।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं सुनते हैं संत मीराबाई की भक्ति रचना। संगीत है श्रीनिवास खड़े और स्वर पंडित उल्हास कशाळकर।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में संत मीराबाई की भक्ति रचना। इसे संगीतबद्ध किया है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने।

श्रोताओं अभी सुनते हैं पारंपरिक भक्ति रचना। संगीत है श्रीनिवास खड़े जी का और स्वर है पंडित भीमसेन जोशी जी का।

समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।

श्रुतम् एषां चरणसानिध्या जीवा मुक्ता भवन्ति साखरे वंशविख्यातं ज्ञानदानपरायणं विनायकं गुरुं वन्दे भवबन्धविमुक्तये ज्ञानप्रतापविलसत्वचनामृतं च अद्वैतभावपटुता हितबुद्धिरस्य ज्ञानेश्वरस्तु भगवान् अवतीर्णैव श्रीरंगनाथ गुरुराज नमोस्तु तुभ्यं। आचार्य निर्वाण प्रकरण प्रकरणामध्ये सहाव्या श्लोकामध्ये सांगतात, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र

0: शिवोहम शिवोहम
1: राहिलेला विषय नंतर
0: कुंडलिका वरदे हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम।
2: श्रोते हो, आत्ताच आपण ऐकलेत आदिश्री शंकराचार्य कृत निर्वाण षटकम यावर निरूपणात्मक मालिका। निरूपणकार होते श्री अर्जुन होलिया। प्रस्तुती भक्ती सुधा।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं सुनते हैं संत मीराबाई की भक्ति रचना। संगीत है श्रीनिवास खड़े और स्वर पंडित उल्लास कशाळकर।

0: श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में संत मीराबाई की भक्ति रचना। इसे संगीतबद्ध किया है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने।
1: ओम गणा गणपति

आइए सुनते हैं शैलेंद्र जी की भक्ति रचना। इसे संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने और इसे गाया है मन्ना डे और साथियों ने।

श्रोताओं अभी सुनते हैं पारंपरिक भक्ति रचना। संगीत है श्रीनिवास खड़े जी का और स्वर है पंडित भीमसेन जोशी जी का।